दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम बनाए सी हुकम मन्ने होवे परवान दा कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी।

नील वस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसी ना जाना देके चौका कड्डी कारू पुराए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे वन साडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली परेन कौ नानक सच ते आई है सोच होवे ता सच पाइए पौड़ी चिट्टे।

0: सुत क्यों कर रखिए सुत पवे रसोए नानक सुत के बिना उतरे ज्ञान उतर तो ही महला पहला।
1: मन का सुत लोभ है जीवा सुत कूड़ अखी सुत वेखना पर त्रय पर तंद रूप कन्नी सुत कन पर

चक्कर लगे चाकरी जी चले खसमे पाए और मत दिसनो अगली ओ जो पेट ना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजह गवाए अगला मोह मो पाना खाए जिसका दिता खावना तिस कहिए सबार।

रंग प्रंग अनेक ना जापन करत बा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरा कार आनंद वधाई तुद कर माण महत्ता तेरे अपना आप जा।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक चिहन यर भरन जात यर पात नहन जेह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अन पाओ प्रकाश अमितोज कह जै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गण जैन त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत वै सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वरनत सुमत आप नारायण कला तार जग मह परवरया निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करया जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपाया जह सिख है संग्रहयो तत् हर चरण मिलायो नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लैण संग हो गुर अमरदास कारण करण जन्म जन्म पासरण तो नगर जना मेरी जात भिख्यात चौमारं हृदय राम गोविंद गुण सारं सुर श्री सलल कृत बारु नीरे संत जन करत नहीं पानं सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुर श्री मिलत नह होए आनं तर तार अपवित्र त्रकार मानी रे जैसे कागरा करत विचारं भगत भगावत लिखिए ते ऊपरे पूजिए कर नमस्कारं मेरी जात कुट भांडला टोर टोवंता नित है बनारसी आस पास अब विप्र प्रधान ते कर डंडावत तेरे नाम शरणाए रविदास दासा लिख कत ना छूटिए खिन खिन भूलन हार बखसनहार बखसले नानक पार उतार सुकह टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसहमदी नूर अर सहु कुर सहु चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह
ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਹੋ ਸਤਨਾਮ।

सलोक महला तीजा कामण तौ सिगार कर जा पहला कंत मनाए मत से ज कंत नयावई एव बिरथा जाए कामण तौ सिगार कर जा पहला कंत मनाए।

तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतुबा जिया अंदर जियो सबस जाने ला सबस तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर आनंद उदय तुद कर मान महता तेज अपना आप जर।

गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी न जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल

0: रंग परंग नेक ना जापन करतबा जी अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा घर फला तेरा कर नंद वधाई तुद कर मान महता ते अपना आप जर सर्व कला भरपूर दे सजत कता नानक दासन दास तुदया गए बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेल सगन जगत।

जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरी दुष्ट सवै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सवै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे बरिया मरण काल का त्रास निवरिया खुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझू करियो रक्षा राख लियो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दसकंता काल पाए ब्रह्म अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तमासा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनाया देव दैत जक्षन उपजाया आदंती कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कटकट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट की पट पट की जाने जबद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत दे तर सब हो जीते बदन सृष्ट सब तार आप अपनी बूझो चार तुम सब ही तेरा निरालम जानत वेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निरलंब आद नील नाद सांब साका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा
ਖੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇ ਤਜਕੀਨੀ ਉਤਕੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰੀ ਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ ਯਾਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਜੰਭਵ ਅਬਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣਘਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਤੁਜਤਾ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਇ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਮਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੀ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਐ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ਟ ਟਰੇ ਤਤਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸ਼ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਤ ਮੈਂ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰ ਕਹਾ ਦਾਲਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੀਦ ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੈ ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰ ਦੁਆਰ ਬਾਹੀ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੈ ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰ ਦੁਆਰ ਬਾਹੀ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया, सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्दो तां गावहो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ये मन मेरिया तू सदा रह हर नाले, हर नाल रह तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार यो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरत स्वामी, सो क्यों मनहो विसारे, कह नानक मन मेरे, सदा रह हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे। सदा सिवत सला तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जनिशा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटह, जिस दियाँ है वडियाइया। कह नानक सुनो संत, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ, तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनहो वड पागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पे सर से, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तीन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो।
अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो जी को खावे जी को पुंचे तिसका होए उदारो ये वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैं ना जोग कीतो ई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया विरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै हरिया वाहिगुरु जी का खालसा।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दस हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद न सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा

जब लो नहीं पाग लीलारी उदय, तब लो प्रमति फिरते बहुतायो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछताया। तत् विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निहाले। चकवी सूरज हेत है, मिल होन सुखाले। नेहो कवल जल जानिया, खिड़ मोह वे खाले। मोर बबीहे बोल दे, वेख बदल काले। नार पतार प्यार है, मां पुत संभाले। पीर मुरीदा पिरहड़ी, ओह निभ नाले। नार पतार प्यार है, मां पुत संभाले। पीर मुरीदा पिरहड़ी, ओ निभ है नाले। सुकह टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय। दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशांदशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावी साहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशांदशाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावी साहो। सतना

जत सरी महला पंजवा आए अनक जन्म प्रम सरणी उदर देह अंधकूपते लाभ हो अपनी चर

साधु संगत कै अंचल लावह। बिखम नदी जाए तरणी, सुख संपत माया रस मीठे, एह नहीं मन मह तरणी। हर दर्शन तृप्त नानक दास पावता,

सुख संपत माया रस मीठे, यह नहीं मन मह तरणी, हर दर्शन तृप्त नानक दास पावता।

परगास गुरु का सदा घट घट परगास पया जस जन कै। एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभात है कर इसनान। इसनान करें प्रभात सुदमल गुर पूजा विद सहद करं। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं। जग जीवन जगन्नाथ जल थल महरया पूर्व बहुविध वर्णं। सत गुरु गुरु से

समरथ गुरु सिर हथ धरियो गुरु कीने कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरियो निस बासुर एक समान ध्यान सुनाम सुने सुत भान डरियो भन दास सयास जगत गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु से

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहपंगुर प्रसाद। आसा महला पहला वार श्लोकां नाल श्लोक पी महले पहले के लिखे ढुंडिया सराजे कि तुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरे अपने दिवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा।
1: जे सौ चंदा उगम है सूरज चढ़े हजार ए चानण होंदिया गुरबिन कोर अंधार महला पहला।
0: नानक गुरु न चेतनी मने अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सोना।
1: फलिए फुलिए बपड़ी पीतन विच सुहा पौड़ी।

रे मन मूस बिला में गर्बत करतब करत महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगुना सुत बनता साजन सुख बंदप तास्यो मोह बड़ो सोकना बोयो बीज अंक मम अंकर बीतत आउद करत अगना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत।

आकाश नामावत बिष्टा अस्त कृम उदर भरयो है। दह दिस ताए महाबिख्या को पर तन छीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो

0: प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा कर कृपा संत आप करियो है।
1: गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी स्नान दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रबतारी साजन मीत सखा हर बंद जी तान प्रभ प्राण उदारी ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
2: आबधि कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन

0: अस राखो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गोरे रामदास राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुर सेवियै, एह निस सहज सुभाई, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सह कुर सह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहद साहु, जिस पास बैठिया सोही है, सब ना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहद साहु, जिस पास

आए मिटे पपाखिया सब अंदर एक वरतै किने विरले लाखिया जन नानक पै निहाल प्रभ की पाखिया सब अंदर एक वरतै किने विरले लाखिया जन नानक पै निहाल

0: गुण जगियाइया तत् सबको नवे आपको पर्क नवे ना कोय तार तारा जू तोलिए ने वैसा गौरा होय अपराधी दूणा ने वह जान जो हंता मृगा हे शीस नवाया क्या थी है जारे दे कुछ दे जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज बगल समाधंग मुख झूठ भी भूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक लीलाटंग धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्म करमंग सब फोकट निश्चय करमंग कहो नानक कहो नानक नहीं चो ध्यावे मेरे सतगुरु बाट ना पावे पौड़ी।